गावन तुदनो पंडत पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर गमाश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई।

रहाउ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वड़े आई।

प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है।

क्या गुण आख वखाणा, जो सेवा है जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी, से जान जुग मैं सुख वासी, से मुकत भय जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे ओ बाच बेनती चौपाई

हरे दीन बंद दोष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ।

भाव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीने उत पूज खान बहुर राच दीने। कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संग।

संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो राण काता जी अस तुझ तब सरनी परे तिनके दोष्ट दुखित हवा मरे पुरख जावन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते आय है ताकि काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला

मैं पाया। ई मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा।

सत्संग जी बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आजपुरी पाची दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद नू सिमरन श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दयावत आए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदार दा त्यंतर के खालसा से बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारी चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन चकिया देख चलाई ते वाहि देख निट कीता ते ना प्यारियां ते त्यारियां दी कमाई दा ध्यान अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। जन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म हे सीह दिते बंध बंध कटवाए खोपरियां लुहाइया चरखड़ियां ते चले आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आ रहा सी किसे देखे सरसा संग निभाया तिना दी कमाई दा ध्यान अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। गुरुद्वार बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है चित आमर का सद का सर्व सुख है जहां जहां गुरु खालसा साहब तहां रचा रियायत देव देख की फतेह ब्रद की पहच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी की बुरबली बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकिया चंडे बुंगे जुग जुग टन धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु गरीब नवाज पंधे सदा सहाज दता जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आप जे पंथ नूं छोड़िया गया दर्शन दास सेवा संभाल दा दान अपनी खालसा जी नूं बख्शो। हे रोटियां दी ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जी दोए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आप जी दे चरण कामना अरदास में उतार दियो आपने बख्शिश की आपके चरण पित्र गुरबाणी सुखमनी साहब ने संभूर पाठ दिता है इस वे सिंह समा जान के आपके चरण सोधार लहरा साहब के पाठ की तरह कृपा करो हो भुलां चुकां की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगत हिरदय विशाली कृपाता करो जी अगो तो शोध से पित्र बाणी टाणी बल बुद्धि बख्शिश करो। गरीब नवाज इस खुशी में आप दख्शियां दातों में पित्र कलाम शाह देगा तैयार करके हाथ दार आप जी भोग लाओ सीत प्रसाद साह संगत की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जपे बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देश प्रदेश रक्षा बख्शिश करो जी दतार जी आप जी मक्खियां दातों चो लग रहा थोड़ सवार प्रबंध करनी गरीब नवाज कृपा करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे पहली सिंह सिंघनिया तंदुरुस्ती बख्शो चढ़ गया बख्शो और सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भान बखनी पालता करो भावना दात बख्श करो गरीब नवाज जी अमृत वेद लैके दरते आई सब संगत की हाजरी दर प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ संगत का दरते तिर फुर भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गरीब नवाज कृपा करो दतार जी खालसा पंथ सिख कौम एकता स्वागत आदि बख्शी करके सतलोज दाल बख्शो चरणा जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शी कर इकबालता करो जी। गुरु गरीब नवाज कृपा करो दूर दायक ने बैठकियां कथा की श्रवण करियां सारी संगत जी हाजरियां प्रवान करो घड़ियां लेके लाओ दतार आपने बख्शी की संगत ने बख्शे संगत आदि चरणा धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेअंत माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा सिंह दतार संगत माया भेटा कर चरणा प्रवान करो बख्शा साहब की कमाइया सबर करो कार्ज वध दतार साफ संगत दिया शुभ कामना वास्तव पूरी करो जी दतार मेहनत कर आओ सेवा प्रवान करो भुला चंबा बख्शो पवित्र गुनामे बख्शा करो रंग अज के शाम कथा की दरबारा कथा की दरबारा की आरंभता वास्ते आगा बख्शो रेंदे का सवार के चरण तुरंत बनाओ सही प्यारे मेरे जिन्हें मेरा अवतार नाम देता हुआ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने दरबार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा अग्ञा भई अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को मिल बोच है कोज शब्द में

इतनी सेवा पालन करने जी भला चुका दी क्षमा आवड़ नमस्कार हो भाई साहब भाई नवदीप सिंह जी पासों पावन पवित्र चल रही लड़ी वाला लड़ी वाल कथा सरण करिए जी मलाव फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ दखणे महला पंजवा कुरिए कुरिए वैद्या ताल गाड़ा महरेर वेखे

कृपा दे नाल ए अपने आप नू संकोच के अपने आप नू यों कह के लयबद्ध करके गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहते निकल जाने। जो गुरु साहब ने अपने जीवन में सानू उपदेश दिता है, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी ने क्या सी ना, हालांकि असि उस साखी सुनने हैं सिर्फ इत्थे मुक जांदी उस साखी कि उन्हां दे जामे नाल फुल टुट गया, टुट गया ते गुरु साहब ने कहा भी बेटा जामन संकोच चलो कि अपना जामा संकोच चलो। ते गुरु साहब ने जदों भी तुरना गुरियाई ते बैठण तो बाद भी जदों भी वह अपने आसन तो उतरते सन जां किसे पासे भी तुरन लगते सन ते अपने दोहां हत्थां नाल जामा संकोच लेंदे सन, गुरु साहब जी दे बचन पल्ले बन्ने हुए सन। इहदा भाव सिर्फ संकेत महान पुरुषां दे बोल जिहड़े ने साधारण नहीं हुंदे, वह वक्त लई सिर्फ उस वक्त लई नहीं हुंदे, वह जुगां तक हुंदे ने जिन्ना चर सृष्टि ने रहना है। महान पुरखां दे बोल सब दे लई हुंदे ने, वह सब दी मार्गदर्शनता करदे ने। गुरु साहिब दा कहना कि दामन संकोच चलो, इहदा भाव यह है कि कल्ला एक कपड़ा नहीं, यह जीवन भी एक दामन वर्गा है, यह जीवन भी एक वस्त्र वर्गा है। तो संसार दे विच विकारां दी अग लपटां पई खा रही है, संसार दे अंदर विषय विकारां दी कालक भी उड़दी है, धूड़ भी उड़दी है, ते सानू दामन संकोच के चलना पएगा, सानू अपना आपा संकोच के चलना पएगा, वह भी उहदी किरपा नाल। जो भगत नामदेव जी कह रहे बाबा जी मैं किन्ना कु यतन करा, लोभ लहर अत निजर बाजै, बहुत निरंतर चल रही है, मेरी सावधानता भी की करेगी। मैं ते तेरे अगे अरदास करना, अरदास एक बड़ी वड्डी सावधानता है, अरदास एक बड़ा वड्डा अपने आप एकागर करन दा जरिया है, अपने अंदर हौसला भरन दा, अपने अंदर ताकत भरन दा, अपने अंदर यों कह लिए भी शुभ गुणा नूं भरन दा एक बहुत वड्डा वसीला साडे पास जिहड़ा है वह अरदास है। जिन्हां लोकां कोल अरदास नहीं, जेडे रब दी करनी ते रब दी हस्ती ते विश्वास नहीं करदे, वह अरदास भी नहीं करदे, क्योंकि अरदास तां उन्हां कौमां ने करनी है ना जिन्हां दे कोल। हालांकि कुछ धर्म ऐसे ने जिन्हां ने रब दी होंद नूं स्वीकारिया ही नहीं, पर अरदास वह भी करदे ने, वह अपने आप नाल इस तरह जुड़दे ने। बुद्ध धर्म है रब नूं नहीं मन्नदा, पर अरदास ते उहदा भी विश्वास है, अरदास वह भी करदा है, वह भी अपने हो चुके बुद्धा नूं याद करदा है, जिहड़े महाप्राण निर्वाण नूं प्राप्त कर चुके ने, कि साडा मार्गदर्शन करो, साडे नाल रहो। इहदा भाव की है भी एकाग्रता वास्ते, हौसले वास्ते, जीवन नूं तोरन वास्ते अरदास बहुमुला साधन है मनुख दे कोल। ते सानू गुरु साहिब ने अरदास बख्शिश कीती है, हर वक्त असी जदों कोई लोड़ होवे, जदों कोई विपता बने, जदों कोई समा बने, नीता प्रति सी पढ़ने भावे पढ़िया ते सिर्फ खुशी दे मौके ते शब्द जांदा ना, कीता लोड़ी है काम सो हर पै आखी है, कार्ज देह सवार सतगुरु सत साखी है। पर इहदा मतलब सिर्फ एक किसे खास ईवेंट दे लई शब्द नहीं, जिंदगी दे हर पड़ा ते, जिंदगी दे हर मौके ते असी परमात्मा नूं आराध सकदे हां, सिमर सकदे हां, पुकार सकदे हां, ते हर रात हर मार्ग ते साडे नाल तुरदा है। सो दाता जी कहिंदे वेखे छिट्टड थीम दो, जे तू वेखे कि पैरियां ने छिट्टां है भाई, फरीदा जे जाना तिल थोड़े संबल बुक भरी, जे जाना सो नडना ता थोड़ा मान करी, भी जिंदगी दे तिलां रूपी जीवन जेड़ा मिलिया है ही थोड़ा है, खिसक रहा जा रहा है, ता संबल बुक भरी, संभल के संभाल के सावधानी नाल बुक भरी। ये जेड़ा सलोक उचारण कीता है, जे जाना सो नडना ता थोड़ा मान करी, ये जीव स्त्री हालांकि सारा प्रकरण पंचम पातशाह जी का भी कामण ते कंत वाला है, ते श्लोक भी कामण ते कंत की गल करदा। कामण ते कंत जदों पंजाब दी धरती ते खास करके बाहर इलाके वाले पासे जदों भी कंत कामण नूं वर के प्रणा के अपने घर लैके आउंदा ना, अज तां सानू सारा कुछ पहला पता हुंदा है कि आ मेरे नाता कादा है, रिश्ता की है, क्योंकि अज समाज होर तरह है। पहला किसे नूं कुछ नहीं सी पता हुंदा, सिर्फ इन्ना पता हुंदा सी परिवार दे एक दो जिया नूं पता हुंदा सी भी परिवार दे आ सियाणे दो जी ने, आ परिवार है, घर है, आ टिकाणा है, आ काम धंधा है, जिया दा नहीं सी पता हुंदा।
बीबी नूं इह नहीं सी पता हुंदा मेरी ननान कौन है, सस कौन है, दराणियां जठानियां कौन है। बड़ा वड्डा

गौड़ी दीप की मोहल्ला पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीरत आखी है, करते का हुए बिचारो तित कर गावो सोहिला, सिवरे सिरजन हारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला। हाँ वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ, नित नित जियड़े संभाली अन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कमण सुमार, संभल साहा लिखिया मिलकर पाव तेल। देहो सजनिया सीसड़िया जो होवे साहब से उमेल, कर करे हो पावचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। राग आसा मोहला पहला, छह घर छह गुर छह उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए। सोक राग वडाई तोय रहाओ, विस्वे चसया कड़िया पहरा तिथी वारी माहो हुआ। सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेस, राग तनासरी मोहला पहला। गगन में थाल रव चांद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती धूप मले आलो पवन चवरो करे, सगल बन राय बुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंड ना तेरी आरती, अनहता शब्द वा जंत फेरी रहाओ। सह सब नैन नन नैन है तोहे का, सहस मूरत नन्ना एक तोही। सहस पद बिमल नानी एक पद गंध बिन, सहस तब गंध चलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सब मैं चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष भावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकर लोभित मनो, आनंद नो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंका, होए जाते तेरा नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया। मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हाले मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर साध न जाने आ, तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यो ज्यो चले चुबै दुख पावे है, जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अब नासी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहां खाड़ चल हो हर लाहा। आगे बसन सुहेला, आउद कट है दिनस रहन हारे। मन गुरमिर काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मैं तरय ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस अकत कथा दिन जानी।

वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी चंत महला चौथा कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्याय जियो। सतगुर मिले सुपाय सहज गुण गाइए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू सतगुरु जी ने कृपा बख्शिश कीती है। अमृत वेले पावन पवित्र तख्तां ते सुभायमान होकर के सतगुरु जी ने दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन। अज दे इलाही दरगाही श्री मुखवाक आप जी ने सरवण कीते हन, जो तनासरी राग अंदर शंत रूप विच धन गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जी दी पावन पवित्र रसना तो उचारण कीते गए। सतगुरु जी दे पवित्र अंग 690 उपर सुभायमान हन। गुरुदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने यही रहमत बख्शिश कीती है कि हे वाहिगुरु, आप जी दे नाम दी प्रीत, आप जी दे नाम दा प्यार जीव दे सेवक दे हिरदे विच तदों ही वसदा है जदों आप जी निहो ला देंदे हो, आप जी कृपा कर देंदे हो। हरी दी कृपा दे नाल ही बख्शिश दे नाल ही हिरदे रूपी घर अंदर परमेश्वर दा नाम रूपी अमृत वस जांदा है। उदी कृपा दी बदौलत ही नाम दी सुखां दी आनंद दी प्राप्ति हुंदी है। ए गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अज दे श्री मुख वाक विच बख्शिश कृपा कीती है। गुरु कृपा प्रभु कृपा सब तो वड्डी दात है। सो गुरु कृपा करे सबना नू दरों करो नाम दान, गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश कर तिनवाजन जी। समूह संगत दा धन्नवाद। आओ प्यार साहब अमृत बाणी श्री सुखमनी साहब जी दे पाठ होणगे। प्यार साहब आप जी ने सरवण करने हन भुला चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आदि गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरौ जास बिसंबर एकै, नाम जपता गंत अनेकै। वेद प्राण सिमरत सुदाख्यर, कीने राम नाम इक आख्यर। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कांखी एकै दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारो। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान, नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागू पाए। प्रभ कै सिमरन सब ते उच्चा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते।
प्रभु को सिमरह से जन परवान, प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सुधा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगर वाला, प्रभु को सिमरह से परोपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरह तिन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन ने चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ सात, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्किल होवै तो भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जप तो सुखिया, लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जिहु मार गेहु जात जिहु मार गेहु जात केला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नामन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परमगत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत है पार पराही, अनिक बिघन जय आए संगार है, हर का नाम तत्काल उदार है, अनिक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मन कबू न तू वै, हर का नाम कोट पाव को वै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई है साध कै संग, जे मार के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैडे मंद गुबारा, हर का नाम संग जे आरा, जहां पंथ तेरा को न सुझानू, हर का नाम ते नाल पछानू, जय महा भयान तपत भो काम, ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जात्र का मन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै, भगत जिना की बरत नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर का नाम उदरे जनकूट, हर जिस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान, मंथन रंग रत्ते रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का पर न भंग, हर का नाम जन की वडयाई, हर का नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कसनाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन को प्रभु दीना, हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, उत भोजन हर रस राते, सुन सुमाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर तुक लथा, नाम की महिमा संत ऋतवसै, संत प्रताप दुर सब नसै, संत का संग बड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुलक छवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को, इस लोक
बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्व टंडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान कट शास्त्र सिमृत व्याख्यान योग व्यास कर्म त्रम क्रिया सगुल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार की ये बहुजतना पुण्य दान हो मैं बहुरतना श्री कटाय हो मैं कराती व्रत नेम कर बहुपाती नहीं तोल राम नाम विचार नानु गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव महा उदास तपी सरथी वह अगन माय होमत प्राण कनिक अश्व है वर भूम दान न्यौली कर्म करे गोवासन जैन मार्ग संजम साधन निमक निमक कर श्री कटावे तव पी हो मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाही नान गुरमुख नाम जपत गत पाही मन कामना तीर दे छुट्टै गर्व गुमान न मन ते उठै सोच करे दिन से रात मन की मैल न तन ते जात इस देह को बो साधन करे मन ते कबू न बिखिया टरे जल तो वह बो दे अनीत शुद्ध का होय काची पीत मन हर के नाम की मैं माऊच नानक नाम उदरे पतद बहुमूच बहुत सियान जम का पौ व्यापै अनिक जतन कर तृष्ण न त्रापै भेख निग गि बुझै कूट पाव दर गह नि सिजय छूट सनाही उपयाल मोह व्यापै माया जाल अवर क्रतु सगली जिमदान गोविंद भजन बिन तिन मान हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सह सुभाई चार पदार्थ जिको मांग साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम रितै सदगावे जे को अपनी शोभा लोरै साध संगे हम मैं छोरे जे को जन मरण ते डरे साध जना की सरनी पर जे चन को प्रभु तरस प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जा का मिटै बिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिया सब ते उच्चा जाका मन हो सगल गिरीना हर हर नाम जिन कट कट छीना मन अपने ते बुरा मिटाना पे कैसे और से साजना सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पापुन नहीं लेपा निर्धन को तन तेरो नाओ निथावे को नाव तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत में जानो हापे अपन संगा प्रवृत्ति तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान कोई सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उत्तम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल पानी में अमृत बानी हर को जस रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण आरे अन्य सुप्रभ सदा संभाल जिन किया ते चीत रख नानक निभि नार अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासवार सिंगारिया गर्भगन में जिन्हें बारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जुगन भोजन सुख थूद बिरद पया ऊपर साक्ष सहन मुख पया बैठ को दैने निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श ले तो नानक सीजे ये प्रसाद रूपर सुख बसै सुत प्राथमित बनता संघस है ये प्रसाद पीवै शीतल जला पव सुखदाई पवन पव कमुला ये प्रसाद भोगै सबरसा सगल समग्री संसात बसा दीने हस पाव करनि तरसना तिसै त्याग और संरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्याप्य नान काड लेहो प्रव्यापे आदंत जो रखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जा किसी व नव निड पावे तस्यो मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सदा हजूरे ताको वंदा जानत दूरे जा की टहल पावे दर गय मान तिसे पिसारे मुग्ध जान सदा सदा फूलनहार नानक रखनहार अपार रतन त्याग कौडी संग्रचय सा छोट छूट संग मचै जो चढ़ना सो स्त्र कर मान जो होवन सो दूर पर छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरै चंदन ले पुतार है तो ही गर्द प्रीत पसम संग हो अंधभू में पसद विकराल नान काट ले हो प्रभ दयाल कर तूत पशु की मान सुजात लोक पचारा करे दिन रात बार पिक अंतर मन माया छप सुनाई कछ करे छपाया बार ज्ञान ध्यान सुना अंतर व्यापै लोभ सुहान अंतर अगन बार संतवा अंतर अगन बार तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरह यथाहा जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक दिजन सह समा सुन अंधा कैसी मार्ग पावे कर गैले उड़ निभावे खां बुझार तुझे डोरा निष्कही तू समझे पूरा का विष्णु पद गावे गुंग जितन कर तो पिसुर भंग
कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू उस गवन करतार करना मैं दिन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाय सुहावे न चीत जो बैराई था सुप्रीत बलुआ के ग्रह पितर बसै अनंत केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मने प्रतीत काल नया वै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोहो याहु जुगत बयाने के जन्म नानक राख ले अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता अम्बारक तेरी तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो स्वाज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुहाए नानक कहू नसी जी बिनावे पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाचे पावे एक वस्त कारण विकोट गवावे एक पी ना दे दस पी हिर ले ताओ मूड़ा कहो का करे जिस ठाकुर से नाही चारा था को की जय सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुखता हूँ मन बूठा जिसने अपना हुक्म नाया सर्व थोग नानक तिन पाया अगंत साहु अपनी देरास खात पीत बरतैन दुलास अपनी अमान कछ बौर साहुले अज्ञानी मन रोष करे अपनी परती ताप ही खोवे बौर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्तु से आज्ञा रख है प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हित सर पर होवत जान अनित बिरख की छाया स्यो रंग लावे ओ बिन सह मन पुछतावे जो दिसे सो चलनहार लपट रहे हो तय अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नेहिता को हाथ नया वै के ही मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज उबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती सुबस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रु मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर पग सात की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पिकत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बासलित विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साच बिना कहू तुचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बृथा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृथे सब काम ज्यो कृपण के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ता कह बल बल जाओ रहत अवर कछवर कमावत मन नि प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू भी नवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म मरे जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सिख तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पर आता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पहमान आप है आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नीरा पाप सियान सगल तिरहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिसले लड़लाए तान तनंतर समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहंगमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहि जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदिर तिसै तिहाय सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसनाठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसै त्यागत अवर लुभावे जे प्रसाद सुख से सोय जय मनाठ पैर ताका जिस गावि जय जे प्रसाद तु सब कु मान मुक्ता को जिस रसन बखाने जे प्रसाद तुर रहता तर मन सदा तिहाय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब तर गय मान पावे नानक पचिति कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिब लावो तिश्राम सनेही जे प्रसाद तिरउल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सास सा सिमरो प्रभ उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे जे प्रसाद आ भूखन पहरी जय मन ति सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी
जे प्रसाद बाग मिलुखत ना राख पुरे प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत्य सत्याई तिसे त्याई जो एक लख्या यहाँ वहां नानक तेरी रखे जे प्रसाद कर पुन बोदान मनाट पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जा सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक तिस कह जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद विखे विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे प्रसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत भावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच ये प्रसाद सबकी गत हुए नानक जाप जपै जप सो आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम हुए सर्व निदान प्रभु तेरी माया आपू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किन कह कछु न हाथ श्लोक अगम गात पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साजन के चर्च कथाष्टपदी साधक संग जल हो तो साध संग मल सगली को तो साधक संग मिटै विमान साधक संग प्रगटै सो ज्ञान साधक संग बुझ प्रभु नीरा साध संग सब हो तेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संगे कुपर जतन साधक महिमा भरने कौन पुरानी नानक साधक शोभा ब्रह्मा समानी साधक संग गोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ल साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग नकत मुंतावे साध संग स्थित मन पावे साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु का संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साधक संग न भीगा पैर साधक संग ना ही कुमंदा साध संग जानी परमानंदा साधक संग नाही होताप साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हुतावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह साधक संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुंचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सूत धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कछ काल दर्शन पेट तो होत निहाल साधक संग कलुखत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग यहाँ सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरा साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तर साधक संग लग्या पर मीठा साधु कै संग कट कर डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साधक महिमा भेद न जान है जिता सुने तेता बख्यान साधक उपमा त्यो गुण ते दूर साधक उपमा रे भरपूर साधक शोभा गना ही अंत साधक शोभा सुदा बेअंत साधक शोभा उचते उची साधक शोभा मूचते मूची साधक शोभा साध बने आई नानक साध पर भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोई अवर न पेखे बिन कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्य समान जैसे राज रंग को लाग तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यो बसदा कु खुद कु चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुणाओ नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगाश जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी का ना ही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नान जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथम रस ब्रह्म ज्ञानी चीन्ना ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत वर्षी
ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का हो सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधारु, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सचागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वित्ता, ब्रह्म ज्ञानी संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहि, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहि, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का

कृष्ण परसु मन में प्रीत निरंजन दर्शु पर त्रैरूपन अपेक्षा नेत्र साध कि संग हेत कर न सुने काहू कि निंदा सब तेजा न उसको बंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बास नमन तेतर है इंद्रिय चित पंच दोख तेरे तो नानकूट मध्य को ऐसा परसु वैष्णु सोजी सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हुए नहीं कर्म जिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहू बल की इच्छा नहीं बादशह केवल भगत कीर्तन संग्राच मनता अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर हुवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावे नानको वैष्णु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मनते बिन से सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म शासन पापा मलको वह तिस भगवती की मत उत्तम हुवे भगवंत की टहल करे नित नीत मंतने अर्पय विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रभु दय राम नाम आत्म में सो दय राम नाम सारस पीवे उस पंडित गब दे जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नयावे वेद प्राण सिमृत भू जय मूल सुख में जाने स्थूल चौवर्ण को देव देश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर्ण में जपे को नाम जो जो जपे जिसकी गत हुए सासंग पावे जन को ए कर कृपा अंतर उतार है पस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रू मंगल गुणगाम काहु जुगत की तय न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास हो तिसका नाम सत राम दास हो आत्म राम तिसने दरी आया दास दसंतन पाए दिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गय परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी पर है सगल संगातमु दासु ऐसी जुगत नानक राम दासु प्रभ की आज्ञातम हितावे जीवन मुख सोख कहावे तैसा हरक तैसा सोख सदानंद तै नहीं व्योग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्था ऐसा ही जुगत नानकोपुर कहिये जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगल ठाओ जित जित कर रखे तैसा तिन आओ आपे करन करावन जोग प्रभावे सोई फन होग पसर आप अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जनंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविधनिक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपेगातम निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाये कई कोट पर देश प्रमाये जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट से जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर वृख निपजाए कई कोट पवन पानी वै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शस्य सूर नखियतर कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतार है नान जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्थशास्त्र कई कोट के रतन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट के चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जखे किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रे शुक्र मृगा सब ते निरे सबूते दूर नानका पलिप्त रहा भारपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मै जीवै मरे कई कोट बोजूनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काले तक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तह राखी नानक सब किश प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खो जनते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को हुए आप सुप्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक अंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रवते हुए ब्रह्मा समाता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो तुम प्रगास
कई गुण तत् के बेते सुधा निहार है को नेत्रे कई गुण नाम रस पीवे अमर पैसा सद ही।

जीवे, कई गुण नाम गुण गावे, तुमरा सुख सह समावे। अपने जन को सास सास संभारी, नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक, करण कारण प्रभु कहे दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहार न जल तल मही सो अष्टपदी, करण करावन करण जोग जो तिस भावे सोई हो, किन में थप थपन हार अंत ने किछ पारा वारा, हुक्मे धार तर रहावे हुक्मे बुझे हुक्म समावे, हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे निकरंग प्रकार, कर कर देखे अपने वडे आई, नानक सब मै रिया समाई, प्रभावे मानुख गत पावे प्रभावे, ता पात्र तरावे प्रभावे, बिन शास्त्र राख्य प्रभावे, ता हर गुण पाख है प्रभावे, ता पत दुधारे आप करे अपन विचार, दुआ सिर काप स्वामी खेले विकसे अंतर जामी, जो पावे सुकार करावे, नानक दृष्टि अवरण आयावे, को मानुख ते क्या होयावे, ज्योतिष पावे सोई करावे, इसके हाथ हुए तो सब किच ले, जो तिस पावे सोई करे, अनजानत बिख्या मैं रचे, जी जानता अपना बचे, पर मैं पूला दे दिस्तावे, निमक माय चार कुंट फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी पग दे, नानक तेजन ना मिले, किन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाकर दृष्ट कछू ना आवे, तिस तत्काल दे दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बखशीस, ताका लिखा न गने जगदीश, जीव पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, अपनी बनता बनाई, नानक जीवे देख बड़ा, इसका बलना ही सहात, कर्ण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावे सोई फुंथियो, कब ऊंच नीच में बसे, कब हूँ सोग हर खरंग हसे, कब हूँ निंद चिंद व्यवहार, कब हूँ बकाश पयाल, कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिला उनहार, कबू नृत्य करे बहुपात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू माँ क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो त्रिवाल, कबू होए बह बडराजा, कबू पेखारी नीच का साजा, कबू कीर्त में आवे, कबू भला भला कहावे, ज्यो प्रभरा कहती वही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबू होए पंडित करे विख्यान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तड़ती ते स्नान, कबू सिर साधिक मुखियान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनिक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, ज्यो प्रभावे दिव्य निचावे, जो तिस पावे सोई हुए, नानक दूजा वर न कोई, कबू सास संगत पावे, उस स्थान ते भवर न आवे, अंतर विज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रतिक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिटके गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कह सत कुरबान, श्लोक सुखी बसै मुस्किनी, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपति, जिसके अंतराज विमान, सो नरक पाती हो स्वान, जो जाना मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आप उसको करवंत कहा वह, जन मरे भोजन प्रभाव है, धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुक्ता गय सुख पावे, धनवंता हुई कर गर भावे, तिन समान का संग न जावे, बोल उस कर्मानु कुपर करे आस, पल पीतर ताका हुए बिना, सब ते आप जन्ने बलवंत, किन में हो जाए पसमंत, किसे न बदया बंकारी, तर मुराय तिस करे कुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दर गय परवान, कूट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनिक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दर गय को कैसे गवे, आप उसको जो भला कहा वह तुसे भला निकट न आवे, सर्व किरण जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता, जब तारे कुबेरी मीत, तब लग निश्चल ना ही चीत, जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक छूटे, सहज कटेला कूटता वह तृप्त न आवे, माया पाछे पावे, अनिक भोग बिख्या के करे, न तृप्तावे कब कमर है, बिना संतोख नहीं को राचे, सुपन मनोज व्रते सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ का विचार, जैसे दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभु सोए, जो किचकिनो सो अपने रंग, सब तेजु सबु कै संग, बूझा देखे करे विवेक, अपह कपह अनेक मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सदीरिया समाए, आप उपदेश समझे आप, आपे रचिया सब के साथ, आप किनु अपन विस्तार, सब का जुस्का करण हार, उसते पिन कहो किच होए, थान तनंतर कैस होए, अपने चरत अपने चलत प्रभ, अपने चलत आप करने हार, कौत करे रंग अपार, मन में अमन अपने माहे,
नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वखियानी सच सच सत सब गिना कोट मते किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप वत सुंदर पार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परे सो जन उजरण हार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपति संत कै दुखन अर्जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोई संत कै दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करे नान संत संग निंदक पीता रहे संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जुन लवे संतन कै दुखन सर्व जुन पाए संत कै दुखन त्रिग जुन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाहे नान संत पावे तो पीगत पाहे संत कनिंद गुमात ताई संत कनिंद कन टिक न पाई संत कनिंद गुमात यारा संत कनिंद परमेश्वर मारा संत कनिंद राज तेहीन संत कनिंद दुखिया दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत के निंदा दुख में दोग नानक संत पावे तो सुखा पी हुए मोग संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी के सह का निमित संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाऊ नानक संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अत बीजते टूटे संत का दुखी कित का दिन पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइये संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किच नाही अपन भी जापे ही खाए संत के दुखी को वर्ण राखन हार नानक संत पावे ता ले उबार संत का दुखियो बिल लाए ज्यो जल बिहु मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राज ज्यो पाव किंदर नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै केला ज्यो बुआड़ तिलखित माए दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी शुद्ध मिथिया कहत किरत निंद का तुर ही पया नानु जो दिस भाव है सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पुजै न आसा संत का दुखी उछले निराशा संत का दुख न तृष्ट कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए पया किरत न मिटे कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कट तिसके करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तुत करो दिन रात तिसे त्याओ सास ग्रास सब कछ वर्त्या तिसका किया जैसा करे तैसा कुथिया अपना खिलाफ करने हार दूसर कौन कह विचार विष्णु कृपा करे तिसा प्रणाम दे बड़भागी नानक जन से श्लोक तजो सियानप सुरजन हो सिमरो हर हर राय का सार मन रखो नानक दुख भरम पो जाय अष्टपति मानु की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिया रह अघाय पूर्ण तृष्ण लग गया मारा रखे कु आप मानु कह किच ना ही हाथ तिसका हुक्म सुकोय तिसका नाम रकंठ परोय सिमर सिमर सिमर प्रसोय नानक बिघन लग गए कोई उस मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सुधा सुहेला कर लह जियो नैनो पे ठाकुर का रंग सासंग बिन सब संग चरण चलो मार गो बिंद मिटे पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर गहना अनुकूजल मत्था बड़भागी ते जन जगमाए सदा सुधा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार उसे तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी को एक एक पछाने तुत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन माने नानक जन निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपन आप सुझे तिसकी जानो तृष्णा बुझे सास संग हर हर जस कहत सर्व लोक त्योहर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बखियान गृष्ट में सोई निर्वाण एक ऊपर जी जन किया सा तिसकी कटिए जमकी फासा पार ब्रह्म की जिसमन भूख नानक जिसन लागे दुख जिसको हर ब्रह्मन चित आवे सो संत सुहिला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद सब बुझिया
जब देखो तब सब किछ भूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल, न के जन्मे न किछ मरे, अपन चलता पी कर आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप आवन जान दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सकल मैं आपनिक जुगत रचता, प्रताप विनाशी नाही किछ खंड, धारण तारे हो ब्रह्मांडल कपे पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सौर संसार उदरे तिनमंत, प्रभ के शिव सुगल उदाहरण, प्रभ के शिव रूप विसारण, आपे मेले कृपाल, गुरु का सब जप है निहाल, सो उनकी सेवा सो इला गया, जिसनु कृपा करे बट भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरखोत्तम करमान, जो किछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हो वै सोय, करने हर पछाने सोय, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसके उपजे तिस माय समायो, सुख निधान उन्हु बने आया, पसको आप दिनो महा, नानक प्रभ जन एको जान सलोक, सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार, जाके सिमरन उधरी है नानक तिस बलिहार, अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन बाहि, तिस्ते फिरता कोई नाही, रे मन मेरी सदा हर जाप, बनासी प्रभ्या पे आप, अपन किया कछु न होए, जिस प्राणी लोचे कोई, तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जपे कर नाम, रूपवंत हो नाही मोह है प्रभ की जो, सगल कट सो है, धनवंता हो क्या को गर्व है, जन सब किस तिस पै दी या दर्व है, असुरा जी को कहा वह प्रभु की कला बिना कहता वह, जी को हुए बह दातार, तिस दिन हार जाने गावार, जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सूजन सदा रोग, जो मंदिर को था मैं थमन, त्यों गुरु का शब्द मन स्तंभन, ज्यो पाखाना चढ़तर है प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है, ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश, गुरु दर्शन देख मन हुए विगास, जो माव ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तिन संतन की बांचो तूर, नन की हर लोचा पूर, मन मूर काहे बिरलाई है, पूर्व लिखे का लिखिया पाई है, सुख तो प्रभु देव नहार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कुछ करे सोई सुख मान, पूला काहे विरह जान, कौन बसताई तेरे संग, लपट रे रस लूपी पतंग, राम नाम जो फिर दे माय, नानक पद सिद्धी कर जाहे, जिस वक्कर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, ताज मान लिहु मन मूल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खीप संत संग चाल, वीर त्याग विख्या जंजाल, तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दर कह सोए, हो व्यापार विरला व्यापार, नानक ताके सद बलिहार है, चरण साध के तोय तोय पीव, अर्प साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइये कुर्बान, सा सेवा बड़ भागी पाई है, सा संगार कीर्तन गाई है, अनिक बिगंती साधु रखे, हर गुण गाय अमृत रचा कै, उठ गई ही संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा ननहार, भूखे को देवता दार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, साब किस तिसका उकरण जोग, तिस बिंदु सर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब त्योच निर्मल करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जने आवे हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिया त्यो लोए, जाके हृदय को हुए, सच करनी सचता की रहत, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, सची दिस सच्चा आकार, सच वर्त सच्चा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता, श्लोक रूप नारेक न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिस हे बुझाए नानका, जिस हुए सो प्रसन्न, अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुक की तू प्री त्याग, तिस्ते परै नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, सा तेरे की चरणी पाओ, नानक मन एहो अनुराओ, मनसा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण भरण जाका नित्र फूर, तिसका मंत्र न जाने होर,
हंड रू मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिए करता कै राज मेरा जोग में जोगी तप में तपीश्वर गृष्ट में भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किनंत न पाया जाकी लीला की मित नाही सगल देव हारे अवगाही पिता का जन्म की जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिंदे जिंदास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जिनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे करंग नाना बित किन्नो विस्तार प्रभ विनाशी कंकार नाना चलत करे किन माहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारी सगले जंत नाम के तारी खंड ब्रह्मांड नाम के तारी सिमृत वेद पुराण नाम के तारी सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारी आकाश पाताल नाम के तारी सगल आकार नाम के तारी पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाई नानक चौथी पद में सूजन गत पाए रूप सत जाकर सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समाहि समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत तपत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिरसो करने हार अवर न भूज करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुरु कै वचन पदार्थ लहे दाते तू काटन हार जाके संग तरे संसार जनका सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी

सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाऊ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेव कौ गुर सदा दयालु सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार तिहाटै सतगुर सिख कौ नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख कौ जी नाल सुमारै गुर कै गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आप सुकौ कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्ज रास सेवा करत हुए निकामी तिस कहूत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग रता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक कह आप नहीं कछ परम सहस से आनप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर वचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुरख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पिखै हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावै तिसले मिलाए जे बाए कुष्ठत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहु बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सद बलिहारी सदगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने इहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए उस पुर का नाही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश शिव को दे मोह माया कै संग न लेप मन में रखै हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक परम मुँह दुख तहते नासे तप्त माहे ठाड वरताई अनंत भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरपौ होए बसे सगल व्याध मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी तित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तारु जिन सगली मोरी अपने चरत प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हार बिन दूजा नाही कोई
सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पहि प्रगासु साध कै संग रच रचनाय अपनी कल तारी अनिक बार नानक बलिहारी। श्लोक

राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस धन को चार कुंट उठता वह, सो धन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी। अनिको पावी रोग न जाय, रोग मिटे हर अवखद लाय। सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान। मन प्रबोधो हर कह नाय, दह दिस्तावत आवैठाए। ताको बिगन न लागे कोए, जा कर दे बसे हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सै पूर्ण हुए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नान काटी जमपासी। तत् विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा। आवा गवन मिटै प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। यों रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण धार। अनिक पावना छूटन हारे, सिमृत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करहु मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावह मूर्ख मना। सुतमीत कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ सवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे न बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेहे आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करहु मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विक जाहे। आप जपहु अवरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नान गुन गाओ। गुन गावत तिर उतर समैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल। होहे चिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल। छाड़ सियानक सगली मना, साध संग पावै सच तना। हर पूंजी संच करै व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत।

एक ते पहे, एक अराध प्राचत गए, मानता ने अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक इक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लायस्त परी। जाचक जन जाचे प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम, साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्याओ, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करूं प्रभ की नित नीत, एको टेको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजे चाहु साध कै संग, परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग, बड़भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रत्ते सुख होए, सेव की मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहया सदसंग हजूरी, जिसका साथिन लिया मिलाए, नानक भगति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल न पाने, सो क्यों बिसरै जे की आ जाने, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै, गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया, साजन संत करहु एहु काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपहु अवरह नाम जपावो, भगत पाए तरिये संसार, बिन भक्ति तन हो सीचार, सर्व कल्याण सुख निदनाम, भूडत जात पाए विश्राम, सगल दुख का हो वतनासु, नानक नाम जपो गुणतासु, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही सुआओ, नित्रो पेह दर सुख होए, मन बिकसे सात चरण तो होए, भक्त जना कै मन तरंग, बिरला को पावे संग, एक बस्त दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भक्त जना के प्राण आधार, जो जो जपै सोए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच जान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाय, अनिक राज भोग पटियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत,
भली सुकरणी शोभावंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत सासंग प्रभु निवास सर्व सुख नानक परगास लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार यो कछ न दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सो कहो किस व्यापत जब अपन आप आपार ब्रह्म तब मोह कहा किस होत पर्व अपन खेल आप वरतीजा नानक करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनि तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी जब एक रगम पार तब नरक सुर्ग कह कौन अवतारु जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चलता करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहु कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अविगत अगुचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गुचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपन आप पाप ही चर जा अपन आप पिय चर जा नानक अपन रूप पिय पर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह चल छिद्र लगत कहो कीश जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तह किसे भूख कवन तृप्तावे करन करावन करने हार नानक करते का नहीं सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पै परवीन तै वेद कतेव का कोचीन जब अपन आप आपुर तारे तो सगन अपसगन कहां विचारे जह अपन ऊच अपन अपनेरा ते कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात नानक अपनी गत जन आप जय अचल अचेद अभेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को अपै आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कै एक एक भगवंता ते कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपना पाप त्यारा ते कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते उचाओ नानक आपस को आपह पहुँचाओ जे आप रचियो प्रपंच कार त्यो गुण मैं किन्नो विस्तार पाप हुंते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंचावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखे खेल संकुचे तू नानक कह जय अभिगत भगत है आप
जय पसरै पासार संत प्रताप दूह पाकाया पेतनी उनकी शोभा उनहु बनी आपह कौतक करे अनद चोज आपह रस भोगन निरजोग जिस पावे तिस आपन नाए लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेशुमार था अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुन नहार आप है एक आप विस्तार जात पावे ता श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे ले समाय तुम ते भिन्न नहीं किच होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जी आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जीता

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लखवार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सयाणपां लख होहे ता इक न चलै नाल केव सचियारा होइयै केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जीलै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसाए वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आख है मंगहे देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी ने धान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाए करी जे तीसरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुने गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तिहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनाए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनाए धरत धवल आकाश सुनाए दीप लो पाताल सुनाए पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास सुना है ईसर बर्मा इंद सुना है मुख साला हनमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सत संतोख ज्ञान सुना है अठ सठ का

ਸੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਿਹ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸਾਹੁ ਸਹਾਣ ਗਣਿ ਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਉਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ ਨਮਸਤੰ ਕ੍ਰਤਾਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬਤੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਤਿਰਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤਿਰਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨਿਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਹੁਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਬੇਬੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ
ਅਪੇਖੀ ਅਪਰਮੇ ਅਪੋਗੀ ਅਪੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗਵੇ ਸੁਵਰੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੰ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸਨਾਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰੰ ਨਮੋ ਜੰਤ੍ਰ ਜੰਤ੍ਰੰ ਨਮੋ ਐਸ਼ਟ ਐਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤ੍ਰ ਤੰਤ੍ਰੰ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਅਰੂਪੇ ਸਮਸਤ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕਰਤਾ ਅਧੋ ਉਰਧ ਅਰਧੰ ਅਗੰ ਉਗਹਰਤਾ ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਲੰ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ਦਯਾਲੰ ਅਸ਼ੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕਾਮੰ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਾਸਤਤਾਮੰ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਜਲੇ ਹੈ ਥਲੇ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਆਦੇਸ ਹੈ ਅਪੇਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਨਿਰਨਾਥੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ ਨਮੋ ਸੋਖ ਸੋਖੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੀਤੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੀਤੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਿਆਨੰ ਨਮੋ ਪਰਮਤਾਨੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤ੍ਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਤ੍ਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਅਖਿਜੇ ਅਭਿਜੇ ਸਮਸਤੰ ਪ੍ਰਸਿਜੇ ਕਿਰਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਰਿਦ ਸਿਧੰ ਨਿਵਾਸੀ ਚਰਪਟ ਸ਼ੰਤੋ ਅਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ ਅਖਲ ਜੋਗੇ ਅਚਲ ਭੋਗੇ ਅਚਲ ਰਾਜੇ ਅਟਲ ਸਾਜੇ ਅਖਲ ਧਰਮੰ ਅਲਖ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਦਾਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਭਾਨੇ ਸਰਬੰ ਮਾਨੇ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਭੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਦੇਵੰ ਸਰਬੰ ਭੇਵੰ ਸਰਬੰ ਕਾਲੇ ਸਰਬੰ ਪਾਲੇ ਰੂਆਲ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬਮਾਨ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਆਦ ਉਦਾਰ ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਕਾਲਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਨ ਕਾਲ ਯਤਰ ਤਤਰ ਬਿਰਾਜ ਹੈ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ ਨਾਮ ਠਾਮ ਨ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਰੇਖ ਆਦ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਆਦ ਅਸੇਖ ਦੇਸ ਔਰ ਨ ਭੇਸ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨ ਰਾਗ ਯਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮ ਬਿਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂ ਨਹਿ ਜਾਹੇ ਸਰਬਮਾਨ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮਾਨ ਸਦਾਇਵ ਮਾਨ ਤਤਾਹੇ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਆ ਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ ਦੇਵ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਭੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਨਹੀ ਕਿਹ ਜੇਬ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੀਨ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤੁਰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮਨ ਹੀ ਪੁਰਤੀਨ ਲੋਕ ਚੌਦਹ ਕੇ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪ ਹੀ ਜਿਹ ਜਾਪ ਆਤ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜਿਹ ਥਾਪ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਬਿਸਵ ਰਚਿਓ ਸੁਯੰਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦੇਸ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੁਭਰਮ ਰਹਿਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਪੇਸ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰ ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨਾ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ ਨੇਤ ਭਾਖਤ ਨਿਤ ਕੁੜ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨਾ ਆਵਹੀ ਵਹੁ ਚਿਤ ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋ ਅਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੋ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ
इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग अपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुन गन प्रणाम निर्भय निकाम आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाट्य अंडंड बाढ़ चाचरी छंद त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने हैं चतर चक्र दाने हैं चाचरी छंद न सत्तर है न मित्र है न परमंग न पितर है न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्र है न मित्र है परे है पवित्र है प्रतीश है आदिश है अदृश है अकृश है भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के अछेज्य देश है के अभेज्य भेस है के अगंज कर्म है के अभंज भरम है के अभेज्य लोक है के अदित शोक है के अवतूत वर्ण है के बेभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है के जपतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपाओ अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहिने के एक है अधीने के रोजी रजा कह रही मेरे हा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अपबुल गुना है के शाहान शाह है के कारण कुनेंद है के रोजी दहेंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहीम है के आकल अलम है के साहिब कलम है के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेशु सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजूवल निधान है हरीफल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रपुक्त प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाहद स्वरूप है अगाध है अनूप है ओवं आद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अशूत है के नरकं प्रणाश है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगत्राणंग सर्वंगत्राणंग सर्वंगकर्मंग सर्वंगधर्मंग सर्वंगयुगता सर्वंगमुक्ता रसावल शांत प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेभूते
परमात्म प्रमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न ताता है न माता है न जाता है न पाता है नरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांतो अप्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुसलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज कर रहीम है के रोजी दहेंद है के राज कर रहेंद है क्रीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरी फुल शिकान है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब कीरा है की नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तुमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अधीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल एमा है करीमुल कमाल है के जोरत जमाल है के अचलं प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलं अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार शंतो अप्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशे जो अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आ जान बाहो एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ कर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत तो अप्रसाद करुणालय है अरिकालय है खलखंडन है महमंडन है जागतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है त्रित के तरण है जाग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनास्य है करुणा कर है विश्वम्ब्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अतपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरे गंजन है हरे प्रतापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवास है जास के जास है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे नमो परम तत्तं अततं स्वरूपे नमो योग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेबूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांत अजय अलय अपय अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजूनी आमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात शांद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासे सुतर्मं बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल को निंदा समस्तुल निवासी
अजायब बेबूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमुर रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो मात्र को न देखियत प्राणपति के। श्री भगवान की पाई कृपा हुंते एक रति बिन एक रति के। माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तोरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे। भारी पूजान के भूप पली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे। एते पय तो कहा पहे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। पूत पवेख पवान के पूपत कौन गन है नहीं जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान पजे बेन अंत कौ अंत के ताम सिधारे। तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है। पौन आहार जति जात तार सब ऐसो बिचार हजार क देख है। श्री भगवान पजे बेन पूपत एक रति बेन एक न लेख है। सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे। परि गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। तुर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अब चार है चासार की तार पशैया। तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया। साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। दानव देव फनिंद निसाचर भूत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट इशनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जाम फास करेंगे। जे नर श्री पात के प्रस है पागो ते नर फिर न दिह तरेंगे। कहां पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। नाहत फिरियो लिए साथ समुन्द्रन लोक गयो प्रलोक गवायो। बास कियो बिखयान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाक शीस नेवायो। को बुतान कौ पूजत है पश को मेरतान कौ पूजन तायो। कूर क्रिया उर्जेओ सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। कूर किरिया उर्जेओ सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चेत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा
हमरे दुष्ट सबै तुम कावह, आप हाथ दय मुहे बचावह। सुखी पसै मोरु परिवार, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारियै, चुन चुन सत्र हमारे मारियै। आप हाथ दय मुझे उबरियै, मरण काल का त्रास निवरियै। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर भीषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जबल काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार ते सही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सकल प्रजा जिन आप सुवारी, सिवकन को शिव गुण सुख दियो। सत्रन को पलमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत, चिटी ते कुंचर असथूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपने बुद्ध है जेती, बरनत भिन भिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीने, उत पूज खान बहुर राच दीने। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो राण कहता। जे अस तुज तव सरणी परे, तिनके दोष्ट दुखित हवाय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्ब ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। केल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शाय करता। श्री अस तुज जब पए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो जाहे, सुरस न पावई। सुने मूड चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना, तिन नर के रहै। हो जो जाकी एक बार, चौपाई को कहै। चौपाई
संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन कहि जय भादरव सुदी अष्टमी रविवार तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल

तखी ग्रहो मंद्र बनया हर गाहु मंगल नित सखिए सुख दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सपाके अपना पिर जापय अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरे आ इस जग मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मैं आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सत गुर सिउ चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत तहरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले है देव दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो साचै सुनणै नु पठाए साचै सुनणै नु पठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस सुमाणी सच अलख वेडाणी ताकी गत कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो वाहो साचै सुनणै नु पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे परगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावने इक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नावने द तिसदा अंत ना जाई पाया कह नानक हर प्यार है जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहेला साचै कर गावो गावो तां सोहेला कर साचै जिथे सदा सच ते आवहे सचो ते आवै जा तुद पावहै गुरमुख जिना बुझावहे एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कहे नानक सच सोहेला सच्चे कर गावहे।

रहाओ। ज्यों कूकर हर काया धावै दह दिस जाए, लोभी जंत न जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जो नी पाए, माया जाल पसारिया भीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस न पाए माए, जिन कीता तिसे न जानई फिर आवे जाए। अनिक प्रकारी मोहिया बहुविध एहु संसार, जिसनु रखे सो रहे समृत पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां, घर दूजा

रहाओ। दुख कलेश न पौ व्यापै गुरमंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो न कोय देख दर्श मन साधारै।

सगल ब्रह्म विचारु श्री राग महल्ला पंजवा। दुखकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना, दुहुते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर

कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गत अविगत कछ नदर ना आया संतन की रेण नानक दान पाया।

दाता को नहीं, जिन दित्ता आत्मदान आए से परवान है, जिन गुर मिलया सुपाए सच्चे से तीरत्या दरगह बैसन जाए। करते हथ वड्याइया पूर्व लिखिया पाए, सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणी है।

क्या कथे कथनहार, जितड़े फल मन बाछी है तितड़े सतगुर पास, पूर्व लिखे पावने सच नाम दे रास, सतगुर सरणी आया बहु

पाखंड प्रेम न पाई है, खोटा पाज खुआर, हर जियो इयों पिर रावे नार। तुद पावन सुहागनी, अपनी कृपा लहे सुवार। रहाव गुर शब्दी सिगारिया, तन मन पिरकै पास, दुइ कर जोड़ खड़ी तकै, सच कह अरदास। लाल रत्ती सच भै वसी, पाए रत्ती रंग रास, प्रैकी चेरी खांडी है, लाली मान नाऊ, साची प्रीत न टुटई।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, ना

मिल हर हर कथा करहु। हर हर नाम बोहित है कल युग, खेवट गुर शब्द तरहु। मेरे मन हर गुण हर

पावन पंक्ति एक बारी सारे गाओ, तुसी भी फिर गुरु साहिब दे व्याह दे बराती बन सकते। किन्ने कर्मा वाले होणगे जिहड़े महाराज दे व्याह पुरब विच बाणी नूं एक एक पंक्ति नूं रूह दी खुराक बना के सतगुरु सभना दीआं हाजरी

0: आ जाओ अपना अपना तबला लेके आओ। बच्चे हैं कीरत सिंह, गुरजिंदर सिंह, अंगद सिंह, यश कुमार, हजूर यश छाबरिया। पहले सबने पहले बच्चा कीरत सिंह करेगा। कीरत सिंह आओ तुसी।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: Next, बच्चा गुरजिंदर सिंह कहते अपने तुसी ना तबला ए नाल वाले माइक ते सेट कर लो एदी ट्यूनिंग
1: तबला के

0: सहवीर सिंह, सहजवीर सिंह, सहजवीर सिंह आया नहीं रहा। अच्छा पवित्र सिंह, तोले सो नेहा, दिलप्रीत सिंह, बोले सो नेहा, आगम सिंह, सश्री अकाल, सिमर सिंह, सश्री अकाल। सतंगत ए बच्चा नु हौसला बजाई लिए एक छोटा गिफ्ट ही है, एदे एदे नाल इन्हां नु कुछ खास मिलना नहीं, माँ प्यो के पैसे लगने नाल तां बच्चे कुछ लैस पाणगे। सो पर चलो कितों भी मिले, माँ प्यो तो मिले या स्कूल वालों मिले। हुण साडे ग्रुप पंज दे बच्चे आओ बच्चो, हाँ साडे सीनियर क्लास के बच्चे हैं। फतेह सिंह, बोले सो निहाल, मिहर सिंह, बोले सो निहाल, सहज सिंह, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद सारे का। तो बच्चो बच्चों की फोटो तुसी मैं बाहर ले लो है, ते भाई साहब एक्चुअली वी कैन हैव इट हियर, बच्चे बुला लो जो बाहर नहीं है तो इत्थे कर लैंदे आ। हाले बच्चो जिन्ने बच्चे हैगे इत्थे आ जाओ, लेट्स हैव ए पिक्चर, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट पिक्चर। टीचर्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स आ जाओ जी, ग्रैंड पेरेंट्स सारे आओ, भाई साहब जी गुरमुख रू आ जाओ, आ जाओ, सन नाम जपाते हो तुसी, आओ भाई साहब। हाँ जी आई थिंक बाकी पेरेंट्स आ जाओ, एक किसी नूं सौंप दिओ ड्यूटी। आ जाओ सारे आ जाओ, बच्चे बह जाते हैं, पेरेंट्स खड़े हो जाओ, बच्चे बह जाओ, आओ आओ जी आओ प्लीज। जगदीप कौर जी तुसी भी आ जाओ तुसी आंदे हो मेरे नाल ते वेट करते पे हो, आ जाओ तुसी भी प्लीज।
1: वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह